ye. Yang la, kong de yong gu na, sian da gu xiba de xie jian. Du jian cu no, lu kong jian jian wang chao gu, nga zuo ta ma de, min ba di ni min dong a le. Nian jian wang ji jin zuo nian mong da zang chang da dong jian dong nong zi ge ha jiong kan bo yin. Dian gu tu, jia qiao dong mong zang su nian mong ba ni le, zhe ba lung chi bie kin su dong al jian nian jian ge ye la. Bie jia su re tu ni jian na, ये मध्य वातों सेंराउतों मायो ओंगे लुकम चंजां यो तोन्या मिबा चाजे ये नंगरा सेंकम चं निजे दे मरे जा कम दिया ला नेत्य चेहु जोकिंग चेत चेर ये जे माचो जुंगा ये पेंगुनी सुना मरे जा डेटों ला नेत्य चेहु जोकिंग मिबरा नेचे तो जसो मतो मावो पार चं जवा सोतो जवा तंजो ये पर सेंचे निजे ना मरे जा डेटों नेत्य चेहु जोकिंग चेर ये ला 第二天，香港这边开进一家墨西哥上路车速的，没得我们家大瓦东，人同大瓦提卡拉修进贴着页了，他那没得我杂志拉用，提卡拉修进贴着页边，路呢三脚油布沿西巴农行，香港车脚的杂志的，路康车脚的杂志的，刚刚现在几位安全农业了，别人呢，都进错我农三楼的马油瓦东，我抓东，都把农都个三楼的车别个我拿瓦东。 你口口说叫你到天津去了，第二天你就把俺了，先到古县，先到他这一年，你看第二个用途了，第二个错用用途，先跟他们做，把从头的利益先生的，没天天俺做零星收入。

0: 罗生主播周末有的，德仁格三九革命是林青农啦。电话是川门门空气龙城里空，北京林青姐做准 CP， 小智当局且中当地不行员。小智当局做起的那的不要啦，还将给战友投个当局解释，中当革命那做的下多只有的是，得下多阿给周你班啦，做把乡下呢，得选一个应该为个中华多。别人东北籍这晚呢下这年节开始准备休你总把不一种个绝对绝对绝对比总来对绝种心地越是下这当局这种地农年节点了车水离行农顿的视频每节每日看个慢慢去关于是你农个为中人顿不为个诺不切实中当的农送你们点心短了就为当兵的来些蒙不解贵的事当兵的一来短钱都起心送你们点兵当兵这个开到一千八十步送学点来当兵的一个农而起恰定行短蒙不多为七千元点的事主播穷穷的下了门腿上就给我们是领钱农点个四川门门公车龙车里空被给领钱且真素西比下这张就解中当个对恰的先说
1: 他送大家出那几这我出了林孙比当那大给七米黑得了这我蒙不能这这都先你林西西当他的蒙藏先的中团结来你七个人用的都给你不了如果各种写完的再往温泉撒一头给把眼前撒定了得心痛来几只罢了随中大宝摘点没人的那边大桥东列桥建在拉索巴每桥日到拉索比在俺来给西巴里苏军人都麻痹些俺们啥时候西西呢人南东边家外桥都南拖拉才把桥俺东若年插路西得给些话公巴擦
2: 下期呢公巴结尾热心中马林北巴तेरे खादा शुंगा सो सेंडी नोटी तोचोर नाचो जा गाही तेंजा पेला निसी नाची साचा जेयु सानुला जेलो जो तादो उदा जाबे मचो गोंचो दों जाबे मचो बादी वा दो तोमे मचो लोंगा दे मी तेबे मचो मीलो दे तेंजा ला नेंचो तेसा मी शावा गोंला तुजो देता मी तेने जोंचों सोंवा ना शाजा गेपो 过我两个你最先的你的感谢